0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले

जाट सिख अध्यक्ष होंगे। दो बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
2: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
3: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
4: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
5: इन जम्मू एंड कश्मीर।

श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत

0: तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धारमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: बाकी दादर स्थानकातून बाहेर पडल्यानंतर भेट होई ती पाय रस्त्यांचीच. रानडे मार्ग तर अस्तित्वातच नव्हता. टिळक पूल नुकताच तयार झाला होता, पण त्या परिसरात तोपर्यंत तुरळक लोकवस्तीच असल्यानं त्यावर रहदारी अशी ती नव्हतीच.
1: काठेवाडी वाघरी समाज आणि गोल्फा देवी ह्यांचा नेमका संबंध शोधताना मिळालेली माहिती गोल्फा देवी म्हणजेच शाकंभरी आहे हे सिद्ध करणारी आहे.
2: काय ऐकली कधी तुम्ही ही कथा सात बेटांची.
3: श्रोतेहो, नितीन साळुंखे यांच्या अज्ञात मुंबई या पुस्तकाचं क्रमशः वाचन अवश्य ऐका दररोज सकाळी 8:15 107.1 FM रेनबो आणि सकाळी 9 अस्मिता वाहिनीसह न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍपवर.
2: चला उलगडू आजही विस्मय गाथा.
4: ऑलराइट, शो चल रहा है मस्त मुंबई मेरे यानी आर जे कंचन के साथ. और मस्त मुंबई की जब बात होती है तो मुंबई का जिक्र हम ज़रूर करते हैं और बहुत ही खुशी के साथ करते हैं. वैसे मुंबई लाइफलाइन की अगर हम बात करें, लोकल ट्रेन्स की बात करें, तो जब से मुंबई मेट्रो आई है ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा जो ओवरक्राउडेड इतना होता था उसमें शायद थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है. लेकिन कुछ पैसेंजर्स का ये भी कहना है कि शायद उनके साइड में मेट्रो स्टेशंस नहीं हैं और कईयों को लगता है कि जितने की टिकट होती है उससे कम में वो मुंबई लोकल ट्रेन में सफ़र कर लेते हैं. तो जहाँ तक हो सके, क्योंकि गर्मियों का समय है, तो थोड़ा सा हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखते हुए कोशिश करें कि जहाँ पर भी आप अगर अपने आप को सही तरीके से, यानी अगर आपको AC की सुविधा मिल रही है तो आप ज़रूर उस चीज़ को अपनाएं. क्योंकि क्या होता है कि आप शायद थोड़ा सा ज़्यादा उस वक्त आपको लगे, लेकिन बाद में तबीयत ख़राब होने से अच्छा और उसके पीछे इलाज कराने से अच्छा है कि आजकल गर्मियाँ बहुत है, एलिनो का जैसे कि हमने समाचारों में भी सुना, एलिनो का प्रभाव जारी है. तो जहाँ तक हो सके अपने आप को सुरक्षित रखें और इसी में समझदारी है. वेल, आपको एक बार फिर से बता दें कि आप सुन रहे हैं मास मुंबई मेरे यानी खंचन के साथ आकाशवाणी मुंबई केंद्र के FM रेनबो चैनल पर. अगला गाना आप सभी के लिए.

0: डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित.
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए.
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ.
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है. कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था. कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है. पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना. मैंने कहा ओ ये सही है बेटा.
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्योंकि मानसून्स यानी कि बारिशें जल्द ही एक्सपेक्टेड हैं ऑफ कोर्स, तो क्या होता है कि जब भी बारिशों आने का टाइम होता है, पहले से ही मुंबई शहर में काफ़ी सारे अपग्रेडेशन की कोशिश की जाती है एंड कई बार उसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं कि हमें राहत हो जाती है, कुछ प्रिपेयर्डनेस ऐसी होती है। स्पेशली अगर हम मुंबई की बात करें तो मेट्रो हो, मोनोरेल हो या फिर कोस्टल रोड हो, नॉन स्टॉप अपग्रेड मोड में है, और जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। जब बारिशें आती हैं स्पेशली, तो कहते हैं ना कि सब कुछ ऐसा लगता है कि इंसान को समझ ही नहीं आता है कि वो ट्रैवल कैसे करे, बाहर कैसे आए, लेकिन इस बार जो है ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और यही उम्मीद की जा रही है कि हम सभी के लिए इस मौसम को टैकल करना बहुत ही आसान हो। फिलहाल आप सुन रहे आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल, शो चल रहा है मस्त मुंबई, सुनते रहिए एंड स्टे ट्यून्ड।

और राइट शो चरमस मुंबई और मुंबई कोस्टल रोड की भी अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो प्रोजेक्ट है उसमें एक बहुत ही बड़े पैमाने पर ग्रीन ड्राइव का प्लान है, जिसमें कि काफ़ी सारे पेड़ यानी कि 60,000 ट्रीज को यू नो मानसून से पहले, बारिशों के पहले और बाद में भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ है, क्योंकि मस्त मुंबई है, अच्छी अच्छी बातें हमें जाननी है हमारे शहर में क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या हो रहा है। सो मुंबई मेट्रो 2 का जो एक्सटेंशन है वो भी काम यू नो वडाला और बांद्रा टर्मिनस के बीच में बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, जिससे कि आगे के लिए ट्रैफिक इंजेशन में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। यानी कि जो कितनी सारी मैंने आप लोगों से जो बातें शेयर की, बहुत सारे लोगों को पता रहती है लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता रहती। हमारी कोशिश यही रहती है कि एक से बढ़कर एक खूबसूरत गानों के साथ आपको कुछ ऐसी बातें भी बताएं जो हमारे शहर में हो रही हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: राइट, ठीक 10 बजे होंगे हिंदी में मुख्य समाचार और उसके बाद होगा शो नमस्ते भारत, मेरे यानी आज खंचन के साथ। बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, सुबह के ठीक 10 बज चुके हैं। समय हिंदी में मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। सीबीआई ने द्विशा शर्मा मौत मामले में गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरिबाला द्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं। गिरफ्तारी कल भोपाल में हुई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। खबरों में आगे है, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने क्षेत्र में एक अमरीकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। यह कार्रवाई दक्षिणी ईरान पर अमरीका के ताज़ा हमलों के बाद की गई। कुवैत ने कहा है कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम किया है। खबरों के अंत में, फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर को बड़े उलटफेर का सामना करना पड़ा। विश्व रैंकिंग में 56वें स्थान पर मौजूद हुआन मैनुअल सिरिंडोलो ने सिनर को 5 सेटों के मुकाबले में 6-3, 6-2, 5-7, 1-6 और 1-6 से हरा दिया। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं।

वेल म्यूजिक रियो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग। अ शो जो शुरू होने जा रहा है उसका नाम है नमस्ते भारत। मेरा नाम है आर जे कंचन और भारत की बात चल रही है तो सुनते हैं

भारत में। और जब भी गांव की हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने एक बार पहले भी यू नो मेंशन किया था कि कुछ ही जनरेशन अब बाकी रह गए हैं जिनके पहले के लोग गांव में बसे हुए हैं। एक्चुअली बहुत सारी जनरेशन होंगी, लेकिन कुछ ही लोगों को सेकेंड थर्ड जनरेशन जो है वो शहरों में आकर बस गए हैं, और बहुत विरले ही उनको चांस भी नहीं मिलता कि वो गाँव के दर्शन कर सके। अच्छा, किसी से मेरी हाल में ही बात हो रही थी और हम यही बात कर रहे थे कि कैसे प्रकृति से जोड़ना, नेचर से जोड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खास करके आजकल के नई जनरेशन को। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिस किस्म की गर्मी पड़ रही है, हम सभी इस भीषण गर्मी से त्रस्त हैं और सभी को लग रहा है कि जैसे कि हमने समाचारों में भी सुना कि अगले 4-5 साल तक भी ये भयावह गर्मी बनी रह सकती है। इसका मेन कारण ही हम इंसान होते हैं। लेकिन अगर मैं गाँव की बात करूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप वहां जरूर विजिट करें। अगर आपके कोई नहीं रहते तो आप अपने फ्रेंड्स के रिश्तेदारों के यहां जाइए, और लेकिन अपने बच्चों को उन यू नो रूट्स के साथ ज़रूर जोड़े, वहाँ के घर दिखाएं। हालांकि वो भी गांव भी आजकल के बहुत ही मॉडर्नाइज्ड हो गए हैं, अर्बनाइज्ड हो गए हैं, लेकिन स्टिल वहाँ पर जो आपको तरोताज़ा हवा मिलेगी, प्रकृति मिलेगी, और आपके बच्चे आपको थैंक यू ज़रूर करेंगे। क्योंकि क्या हो जाता है कि मोबाइल की दुनिया में उन्होंने अपने आप को समेट के रख दिया है, और इसकी वजह यही है पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे ऐसा करते हैं, हमारे बच्चे वैसा करते हैं। बट यकीन मानिए, इन सब के जिम्मेदार जो होते हैं अल्टीमेटली पेरेंट्स होते हैं, कि बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने बड़ों को करते देखते हैं। तो जब भी मौका मिले ज़रूर अपने गांव, यू नो जब भी बात करती हूँ मैं कि कई बार हम यू नो अब्रॉड जाने की बात करते हैं, फॉरेन कंट्रीज जाने की बात करते हैं, या फिर दूसरे शहरों की हम बात करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक छोटी सी टिप आपके बच्चों के यानी कि आगे की जनरेशन के लिए बहुत कामगार साबित हो सकती है। कई बार ये बच्चे यू नो इनको पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली जब भी मैं ये शो कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि ज़रूर ये बात शेयर करनी चाहिए कि गाँव क्या होता है, गाँव की मिट्टी की खुशबू क्या होती है, इन मासूम बच्चों को ज़रूर पता रहना चाहिए। वेल, आप बने हुए हैं आज एक कंचन के साथ और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। आपके काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे इस वक्त आए, काफ़ी सारे लिसनर्स हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं। प्रदीप, पंकज महोद, शुभदा, श्रीधर मुराजकर, आर्यन, सोमांशी, अंजू अंधेरी से, वैदेही, विजेंद्र, शुभलक्ष्मी, किशोर नायक, रघुनाथ खनुकर, रजनीकांत पाटिल, प्रमोद चिंचोलकर, फिरोज सिगनपुरिया, प्रणव शिंदे, महेश बोरा, आप सभी का दिल से थैंक यू। आपके मैसेजेस पढ़कर हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे शो को हम और अच्छा करें, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। वेल, गाँव की बातें जब भी होती हैं दिल बहुत ही इमोशनल हो जाता है, और ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे बातें हम कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी सारी बातें अभी कहनी भी है। अच्छा, इसके बारे में वो ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पाते हैं जो एक्चुअली या तो गांव साइड में रहते हैं या फिर वो गांव जाते रहते हैं अक्सर। सो, बने रहेगा हमारे साथ, और आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी संदेश सुन लेते हैं। स्टे ट्यून्ड।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ

0: लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
4: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
3: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
4: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

स्पेशली अगर नमस्ते भारत में हम भारत वर्ष के गाँव की बात करें तो उसकी खूबसूरती ही बहुत ही निराली होती है, फिर चाहे आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहीं पर भी चले जाएं। गांव की जो सुबह होती है उसमें वो जो सुकून होता है जो शहर की रातों में भी नहीं मिलता, जहां चाय की खुशबू, मिट्टी की महक और लोगों के दिल जनरली सब असली होता है। अच्छा, दादी नानी के आंगन में आज भी वही कहानियां बसती हैं जहां नीम का पेड़, मिट्टी का चूल्हा और शाम की वो चाय पूरे बचपन को फिर से जिंदा कर देती है। अच्छा, गांव के दोस्त भी बहुत कमाल के होते हैं, ना ऑनलाइन दिखते हैं ना स्टेटस लगाते हैं। वैसे आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सब दिखने लग गए हैं क्योंकि सोशल मीडिया का जो ज़माना है, लेकिन मुसीबत में अगर सबसे पहले खड़े होते हैं तो वो होते हैं आपके गांव के ही दोस्त। गर्मियां वैसे तो चल रही हैं लेकिन बारिश और गाँव की बात करें तो सिर्फ मौसम ही नहीं बदलता बल्कि कच्चे रास्ते, खेतों की खुशबू और बच्चों की मुस्कान तक खिल उठती है। ऐसा होता है गाँव, इतना प्यारा होता है गाँव।

0: बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: अच्छा, गांव की सुबह की बात तो हो गई, लेकिन जो गांव की रातें होती हैं ना, वो भी बहुत खूबसूरत होती हैं। ना ट्रैफिक का शोर, ना भागती हुई ज़िंदगी, बस तारे और ठंडी हवा और सुकून भरी बातें। कभी नोट किया आपने, कभी वो जब छत पे या खुले आंगन पर जब सारे कज़न्स के साथ आप सोते हैं, तो अपने बचपन की याद को याद कीजिए, और जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं दिखाया वो ज़रूर दिखाएँ। वैसे शहरों ने, और कहते ना कि कहने की बात होती है, लेकिन गांव छोड़कर शहर आने की भी अपनी एक मजबूरी होती है, और उसका जो मुख्य कारण होता है अक्सर वो होता है एम्प्लॉयमेंट का, रोज़गार का। तो शहर ने दिया भी बहुत कुछ है, लेकिन गांव ने जो अपनापन दिया था वो आज तक कभी भी नहीं मिलता। यकीन मानिए, ऐसा नहीं है कि शहर के लोग बुरे होते हैं, लेकिन क्या होता है ना, वो जो ख़ास अपनापन होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ गाँव में ही आपको मिलता है, जहाँ पर लोग चाहे इतने, वैसे काफ़ी सारे धनी लोग होते हैं, एग्रीकल्चर की दुनिया से पूरा बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं मध्यम वर्ग, लेकिन यकीन मानिए उनके जो दिल होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं। वैसे गांव तो छोड़ आए हैं हम, लेकिन सच कहें दिल आज भी वहीं पर घूमते रहता है, जहाँ सपने हमारे बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, थोड़े से सोर्सेज यानी कि संसाधन जो होते थे वो कम होते थे, लेकिन जो आसमान को छूते हुए हमारे हौसले होते थे, उसको आज हमने याद किया इस शो में, नमस्ते भारत में। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, और आप सुन रहे आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल, मेरे यानी आज कंचन के साथ।

0: ऑलराइट, काफ़ी सारे लिसनर्स के मैसेजेस एक बार फिर से हमें यही बताते हैं कि जब भी हम गांव की बात करते हैं तो आप कैसे उस चीज़ से जुड़ जाते हैं। महेश जी, आपकी भी लाइंस मुझे पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा। और प्रमोद जी, थैंक यू, आपने तारीफ़ की शो की, गानों की, आप सभी का। प्रणव शिंदे जी, आपकी भी बात बहुत ही अच्छी लगी। और यू नो, समय की कमी है, नहीं तो मैं सारे लाइंस आपके पढ़ देती। पंकज जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एंड थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। जितने भी लिसनर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें सुन रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर साझा कर रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। और जब भी गांव की बात आती है तो वाकई एक अलग सा ही इमोशन होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ ही जनरेशन अब ऐसी है जो एक्चुअली गांव जाते हैं या उनके कोई रहते हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से, यू नो, अब की जो जनरेशन हैं, एक दो पीढ़ी, वो उनका वहाँ से वास्ता बहुत हद तक कम हो चुका है। और जैसे कि मैंने कहा कि ज़रूर कोशिश कीजिए आने वाली जनरेशन और आपके जो छोटे बच्चे अगर जिनके भी हैं उनको ज़रूर ले जाएं और इस बात का एहसास कराएं कि गांव कितना खूबसूरत होता है। आपके तमाम मैसेजेस के लिए दिल से शुक्रिया। और यू नो, ये एक ज़रूरी संदेश। उसके बाद कुछ ही गाने मैं आप सभी के लिए प्ले कर सकूंगी। ठीक 11 बजे होंगे हिंदी में मुख्य समाचार और उसके बाद होगा कार्यक्रम ब्रेक फ्री। होगी आपसे जल्द ही मुलाकात एक बार फिर, कहीं जाइएगा नहीं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के इंद्र का FM रेनबो चैनल। Until next time, stay fit, stay happy and stay tuned. इसी के साथ आज एक अंचन को दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मो कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: 11:14 हो चुके हैं और आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालें। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। सिद्धरमैया ने कल राज्यपाल की अनुपस्थिति में अपना इस्तीफा राजभवन में राज्यपाल के विशेष सचिव को सौंपा था। राज्यपाल ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था होने तक सिद्धरमैया मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा आज तड़के आंधी के बाद ढह जाने से 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। ये हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ। पुल निर्माण कार्य में लगे कई मजदूर स्लैब के ऊपरी हिस्से पर सो रहे थे, तभी वह अचानक ढह गया। मुख्य समाचारों में आगे, पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मुख्य समाचारों के अंत में, 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। जेमिमा रॉड्रिग्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। कार्यक्रम ब्रेक फ्री के लिए बने रहे 107.1 FM रेनबो पर।

मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीएनएम पर भी सुन सकते हैं।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, ब्रेक फ्री शुरू हो चुका है और कई सारी बातें आप सभी के लिए ब्रेक फ्री में मैं वैशाली लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले, जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, कि हम इस समय एक और चीज से जूझ रहे हैं, यानी लाइफ में वैसे तो बहुत ज्यादा भाग दौड़ है, परिश्रम है, संघर्ष है, लेकिन इसी के साथ साथ देखिए हीट वेव से संभलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अत्याधिक गर्मी है और इसीलिए कुछ स्वास्थ्य सलाह आप सभी के लिए ले आया है 107.1 FM रेनबो। दोस्तों, प्यास लगने पर हम सभी जानते हैं पानी पीते रहना बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर हम काम में या किसी और उलझन में पानी पीना भूल जाते हैं। तो प्यास लगना शरीर में पानी की कमी का सही संकेत नहीं होता है। प्यास लगना यानी काफी आगे का स्टेज होता है, इसलिए हमें खुद को जो है समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए। कुछ लोग यात्रा के दौरान भी पानी नहीं पीते, लेकिन रखना चाहिए पानी अपने साथ और उसको पीते रहना चाहिए। साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि नींबू पानी, छाछ, लस्सी, ORS का उपयोग करना है, फलों का रस इत्यादि, हाइड्रेटेड रहना है। अब ये सब हमें अपने लिए तो करना ही है, लेकिन खास करके बच्चों का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे पानी नहीं मांगते अक्सर और इस वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। तो मेरे दोस्तों, आप सभी को ये कुछ बातें याद रखनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की लहर चल रही है और इस हीट वेव से हमें सिर्फ खुद को नहीं बचाना, हमारे आसपास के लोगों को भी इससे बचाना है। अगर आपको दिखे कोई बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है तो उन्हें थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, और खासकर जैसे मैंने कहा, बच्चों का और बूढ़ों का ध्यान रखिए। और आप सभी यूं ही बने रहें, क्योंकि ब्रेक फ्री में आज आप सभी के लिए मैं ले आई हूं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। दोस्तों, कुछ लोगों को अक्सर जिंदगी सोने के पिंजरे में कैद कर देती है। शानो शौकत, दौलत, रुतबा, सब कुछ होता है, लेकिन उस चमक के पीछे अगर अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी ना हो तो वो महल महल नहीं, कैद खाना बन जाता है। आज की कहानी ऐसी ही एक लड़की की है, जो है तो सच्ची पर किरदारों के असली नाम कुछ और है। आपको बताऊंगी उस लड़की के बारे में जिसने राजमहलों से एक बड़ी चीज चुनी, वो थी अपनी आवाज, अपनी पसंद, अपनी आजादी, और दुनिया, समाज, परिवार के जोर जबरदस्ती से खुद को बाहर निकाल के ब्रेक फ्री करने वाली। ये कहानी है राजकुमारी ईरा देविका और राजकुमार जयवीर की। क्या हुआ जानने के लिए बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

ब्रेक फ्री चल रहा है 107.1 FM रेनबो पर और बातें हम कर रहे हैं राजघराने के, राज परिवार के दो ऐसे लोगों की जिन्होंने दुनिया जमाने की परवाह नहीं की। आप सोचेंगे कि भाई राज परिवार के लोग यानी कि बड़े लोग, अब बड़े लोगों की क्या ही ऐसी समस्या हो सकती है। तो थी वही थी। साल था 1911। दिल्ली के एक शाही समारोह में हर तरफ रियासतों की चमक, हीरे जवाहरात, ऊंची पगड़ियां और अंग्रेजी हुकूमत का रौब छाया हुआ था। उसी भीड़ में पहली बार मिले थे दो लोग, युवा राजकुमार जयवीर और राजकुमारी ईरा देविका। उन दिनों शाही घरानों में शादियां दिल से नहीं होती थी दोस्तों। रियासत या राज्य जो होता था वो ही तय करता था कि क्या

होगा। रिश्ते नहीं समझौते बनाए जाते थे। ईरा की शादी तय हो चुकी थी एक बहुत बड़े राजा से, उम्र में उनसे काफी बड़े, पहले से शादीशुदा, लेकिन सत्ता और ताकत के बेहद ऊंचे और मजबूत इंसान। दुनिया कह रही थी कि इससे अच्छा, इससे बेहतर रिश्ता हो ही नहीं सकता। हमारी बिटिया राजकुमारी को इससे अच्छा दामाद, यानी हमारे घर को इससे अच्छा दामाद मिल ही नहीं सकता। लेकिन कभी कभी दुनिया की बेस्ट चॉइस दिल की सबसे बड़ी कैद बन जाती है। इस कहानी में ऐसा क्या हुआ, जानने के लिए बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: एक गायिका जिनकी सोनी आवाज में है सुकून, जिन्होंने अपनी बेमिसाल गायकी के जरिए हासिल किया सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: आपकी याद आती रही।
0: उन्होंने संगीत सरिता कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां दी।
2: संगीत सरिता के श्रोताओं को आर डी बर्मन साहब, गुलजार साहब और मैं आशा भोसले हम नमस्कार कर रहे हैं।
0: छाया गांगुली, जानी मानी गायिका छाया गांगुली से एक आत्मीय बातचीत।
3: 2, 3 और 4 जून 2026 को सुबह 10:02 पर सिर्फ FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

ब्रेक फ्री चल रहा है 107.1 FM रेनबो पर। और दोस्तों, कई सारी बातें आप सभी के लिए समय समय पर आकाशवाणी ले आता है। और देखिए, अभी जो बात मैं करने वाली हूँ आप सभी से, उससे हम सभी जूझ रहे हैं, यानी कि बात है हीट वेव की। और गर्मी की इस लहर से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जो है किसी न किसी काम काज के लिए बाहर निकलते हैं, भाग दौड़ तो बनी रहती है। और अभी बहुत जल्द स्कूल्स स्टार्ट हो जाएंगी, तो स्कूल शुरू होंगी तो आपको बच्चों को ड्रॉप करने, लाने जाने, ये सारी तमाम चीजें करनी होगी, और बच्चों का भी ध्यान रखना होगा अपने साथ साथ। तो बात ऐसी है कि इस गर्मी से खुद को बचाने के लिए शरीर को ढककर रखना बहुत जरूरी है। ढीले और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनिए, और धूप में निकलते समय छाता, टोपी, कैप, तौलिया या सिर ढकने का कोई पारंपरिक साधन होता है। अगर आप मान लीजिए गांव या किसी और ऐसी जगह पर हो, तो वहां पर आपको अपने सर को ढकना चाहिए, संभालना चाहिए, शरीर को भी ढक लेना चाहिए बहुत ही हल्के, नर्म और ढीले कपड़ों से। बाहर निकलते समय जो है आपको बिल्कुल ही अच्छा फुटवेयर पहनना है, ऐसे जूते चप्पल पहनने हैं जिनसे आपको तकलीफ ना हो लेकिन आपके पांव भी सुरक्षित रहे। तो ये कुछ चीजें हैं जो बस आपको याद दिलानी है कि भूलिएगा नहीं, इस गर्मी से खुद को और अपने अपनों को बचाए रखिए।

और दोस्तों ब्रेक फ्री में हम बातें कर रहे थे राजकुमारी और राजकुमार के प्रेम कहानी की। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया बहुत पुरानी बात है और 1911 इस साल से शुरू हुई एक कहानी आपको बता रही थी मैं, राजकुमारी ईरा देविका के बारे में। और इनकी शादी कहीं कराई जा रही थी, जो इंसान पहले ही से शादीशुदा था, बड़ा था बहुत ज़्यादा उम्र में, लेकिन ईरा ने साफ बता दिया अपने परिवार को कि वो अपनी ज़िंदगी को सियासी दांव पेच का हिस्सा नहीं बनने देगी। उसके एक फैसले ने तूफान खड़ा कर दिया। घर वालों का विरोध, समाज की बातें, अखबारों की सुर्खियां, इन सब का सामना करना आसान तो था नहीं। और इन सब से ऊपर थी एक समस्या, और वो समस्या खुद जयवीर था, जिसे ईरा के पिता बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि ये लड़का बहुत आधुनिक है, बेपरवाह है और राजघराने की परंपराओं के लायक नहीं है। और तो और उन्हें ये भी लगता था कि ये सही नहीं है, इसका चरित्र, उस पर संदेह करते थे। पर क्या है ना, कुछ लोग परंपराएं तोड़ने नहीं, खुद को बस बचाने के लिए उनसे बाहर निकलना चाहते और निकल आते हैं। ईरा और जयवीर ने भी यही किया। उन्होंने दुनिया की आवाजों से ऊपर अपने दिल की आवाज को रखा। क्या किया इन्होंने, ये आपको जानना है और इनकी कहानी भी जाननी है, तो बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
4: हर घर में

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, मैं हूं वैशाली और ब्रेक फ्री चल रहा है। आप सभी को सुना रही हूं एक कहानी इस ब्रेक फ्री में, और ये है कहानी राजघराने के युवा राजकुमार और राजकुमारी की। यानी कि ये जो कहानी है ये एक लव स्टोरी है, और एक ऐसी लव स्टोरी है जो पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। दोस्तों 1913 में फिर क्या हुआ कि लंदन के एक छोटे से रजिस्ट्री ऑफिस में बिना परिवार के, बिना किसी शाही तामझाम के, बस एक दूसरे का हाथ थाम कर ईरा देविका ने और राजकुमार जयवीर ने शादी कर ली। अंग्रेजी अखबारों ने उन्हें नाम दिया रॉयल रनवे कपल। सोचिए दोस्तों, एक राजकुमारी जिसके पास सब कुछ था, फिर भी उसने वो रास्ता चुना जिसमें अकेलापन था, विरोध था, अनसर्टेनिटी थी। क्यों? क्योंकि कभी कभी जो है ब्रेक फ्री होने का मतलब भागना नहीं होता बल्कि खुद तक पहुंचना होता है, और यही किया ईरा देविका ने। किस्मत ने हालांकि उन्हें बहुत लंबा साथ नहीं दिया, उनकी खुशियां बस कुछ समय की थी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ आप क्या सोच रहे होंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे हैं। बात ऐसी है दरअसल कि शादी के कुछ साल बाद ही, यानी तकरीबन कुछ 9 साल बाद ही, जयवीर इस दुनिया से चल बसे।

ईरा देविका आखिरी सांस तक अपनी शर्तों पर जीती रही। ईरा ने आगे की जिंदगी कैसे बिताई अपने जीवन साथी के बिना, आपको बताऊंगी कुछ ही देर में। क्या क्या किया ईरा ने, हालांकि जयवीर नहीं रहे, लेकिन वो उस कद को कैसे पहुंची जिस कद पर बाद में लोग उन्हें याद करते रहे और आज भी करते रहे हैं, जानिए थोड़ी देर में। चलिए कुछ और गाने ऐसे सुनते हैं ना कि जिनसे बस यूं मन बना लेते हैं कि अब से जो चीज़ें हमारा रास्ता रुक रही हैं और सही नहीं है, उन सभी से ब्रेक फ्री करना है।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो और बस ब्रेक फ्री खत्म होने को है, लेकिन मैं अभी आप सभी से इस घंटे के लिए कुछ देर के लिए विदा लूं। इससे पहले बस आप सभी को कुछ बताना चाहती हूं। आपने ईरा देविका और युवराज जयवीर की कहानी आपने सुनी और धीरे धीरे जैसे वक्त बीता तो ईरा देविका महारानी बनी अपने राज्य की, और सिर्फ एक महारानी नहीं बनी, वो उन तमाम लोगों की आवाज़ बन गई जो अपने दिल की सुनना चाहते थे लेकिन डरते थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और आधुनिक शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया। राज्य घरानों में महिलाओं की स्वतंत्र पसंद और व्यक्तित्व को बढ़ावा दिया। प्रशासन में सक्रिय भागीदारी निभाई। सामाजिक तौर पर आधुनिक और प्रगतिशील जीवन शैली को स्वीकार्यता दिलवाई और रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मिसाल बनी। दोस्तों, किसी भी कैद से बाहर निकलने के लिए बस ना कहने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी डर, कोई भी बंधन, कोई भी ऐसा फैसला हो जो आपकी आवाज को दबा रहा हो, तो याद रखिए कि दुनिया हमेशा पहले सवाल पूछती है और बाद में कहानियां बनाती है। आपको तय करना है कि क्या आपको अपने दिल के लिए जीना है, अपने लिए जीना है, खोखली या फिर खोखली पाबंदियों में घिरकर कैद होकर रह जाना है और अपनी जिंदगी को दूसरों के इशारे पर नाचते हुए बिताना है। बस ये सवाल है जो आपको अपने आप से करना है। ठीक 12 बजे दोस्तों आप सुन सकेंगे हिंदी में मुख्य समाचार और उसके बाद होगा म्यूजिक कैफे शुरू। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 12:45 हो चुके हैं और आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालें। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के अवसर पर विश्व भर में सेवारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री ने कहा कि उनका समर्पण विश्व के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरणों में सार्थक बदलाव ला रहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क में गोलमेज बैठक में भाग लिया। वहां उन्होंने 50 से अधिक व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं से बातचीत की। ये बैठक भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी मंच के सहयोग से आयोजित की गई थी। मुख्य समाचारों में आगे, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क लौटाने हेतु अपने बैंक खाते की जानकारी भेजने का आह्वान किया है। ये जानकारी देने के लिए एनटीए ने अवधि 22 जून तक बढ़ा दी है। मुख्य समाचारों के अंत में, मौसम विभाग ने इस वर्ष जून से सितंबर के दौरान देश भर में सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। देश के उत्तर पूर्वी भागों में इस अवधि के दौरान सामान्य वर्षा होगी तथा उत्तर पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत में इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा होगी। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। म्यूजिक कैफे के लिए बने रहे 107.1 FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो। मैं हूं वैशाली और साथ ही साथ बाकी चीज़ों के हम बातें कर रहे हैं इस अत्याधिक गर्मी की, यानी लू जैसी स्थिति है, हीट वेव चल रहा है।

और ऐसे में हमें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अरे भाई, अपने का मतलब ये नहीं हुआ सिर्फ कि आपके घर परिवार वाले, उनका तो रखना ही है, लेकिन हमारे देशवासी, हमारे शहरवासी, सभी का ध्यान रखना है हमें। अब देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना आप कर सकते हैं कि रेडियो सुने, टीवी देखें, समाचार पत्र पढ़े, और जो स्थानीय मौसम विभाग है उनकी जो जानकारी है, ये जानकारी उनसे लेते रहें। ये सारे सोर्सेज हैं जहां से आपको जेन्युइन सच्ची जानकारी मिलेगी। तो ये सारी तमाम चीजें आपको करनी है, और जो हमारा भारतीय मौसम विभाग है, इसकी वेबसाइट पर मौसम संबंधी अपडेट्स आपको देखते रहना है। बाकी चीजें तो आप जानते ही हैं कि पूरे दिन हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीते रहना है, प्यास लगने का इंतजार नहीं करना है, है ना? तो इसी तरह आप जो है गर्मी से होने वाली तकलीफ से खुद को बचा सकते हैं और अच्छा रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं। और भाई, म्यूजिक कैफे में आज क्या बातें लेकर आई हूं मैं आप सभी के लिए, आप सभी उत्सुक होंगे ही। दोस्तों, हमारे जीवन में संगीत ही संगीत भरा हुआ है, और अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि जिंदगी के, उम्र के हर पड़ाव पर आपको म्यूजिक जो लगता था ना अच्छा, और जो आपकी चॉइस थी, वो बदली होगी। मैं भी अक्सर सोच में पड़ जाती हूँ कि नए पुराने गानों की बात नहीं है, पर बात ऐसी है कि हमारी ओवरऑल मनस्थिति और बाकी जीवन की स्थितियों के अनुसार हमारी पसंद आकार लेने लगती है। इसी पर आज बातें होंगी म्यूजिक कैफे में 107.1 FM रेनबो पर। और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा ना, बड़े होते समय, बड़े होने के बाद और उम्र के साथ साथ, तो ऐसे क्या बदलाव आए आपके म्यूजिक चॉइसेस में, हमें बताइए करके कॉल या मैसेज। मैसेज करने के लिए हमारा नंबर है 8657661071, और फोन कॉल के लिए हमारे नंबर्स हैं 4515 4132 4515 4133। तो बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

म्यूजिक कैफे शुरू हो चुका है 107.1 एफएम रेनबो पर और बातें हो रही है संगीत की। तो आपने दोस्तों अभी कुछ देर पहले जो गाने सुने भाई बहुत ही धमाकेदार अपने जमाने के हिट, लेकिन पता है आपको ये गाने हिट क्यों हुए और ये हमारे दिलों पर राज क्यों करते थे? क्योंकि भाई ये जो गाना है देखा ना हाय रे सोचा ना, ये पूरा मस्ती भरा है कि किस तरह जहां जो है ये दांव पे लग गई और कुछ देखा नहीं कुछ सोचा नहीं, दांव पे बस जिंदगी को लगा दिया और भाई क्या से क्या हो गया। देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे रख दी निशाने पे जा, ऐसा कहता हुआ ये गाना बहुत ही मस्ती भरा है, यानी कि ये जिंदगी को जीने का जो जज्बा है ना ये जगाता है। और ये जो फिल्म थी ना बॉम्बे टू गोवा, ये थी कॉमेडी फिल्म, लेकिन देखो उसमें चीज़ें ट्विस्ट एंड टर्न भी कैसे थे। एक जो लड़की होती है वो चाहती है अपना करियर बनाना, उसके घर वाले चाहते कि नहीं वो उस तरफ ना जाए वो कुछ और करे, पर वो जिद पर अड़ जाती है और इस जिद में वो देखती नहीं कि वो कहाँ फंस रही है, क्या वो सही दिशा में जा रही है या कहीं पर उसे गुमराह कर रहा है कोई। लाइफ में ऐसा ही होता है ना, इसलिए भी ये बहुत मज़ेदार लगा क्योंकि ये देखो अगर सोचने बात करने बैठो तो इतनी हैवी चीज़ है, लेकिन इसको कितने मज़ेदार तरह से दिखाया गया है बॉम्बे टू गोवा में। और फिर भाई शोले का ये जो गाना है कि भाई ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये तो भाई एक दोस्ती

0: एल्बम हो गया, एंथम हो गया, ये दोस्ती का एल्बम तो ये है ही है, क्योंकि दो दोस्त इसमें कितनी सारी खुराफातें करते हैं, लेकिन ये दोस्ती का एंथम है। और जीवन में ना घर परिवार के बाद जो सबसे पहले हमें मिलते हैं ना, वो होते हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने दोस्त। जैसे हम बड़े होने लगते हैं ना, तो हम दोस्ती की कस्में खाने लगते हैं, और हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ये तो बोलने की जरूरत है नहीं। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात कहूँ आपसे, करूँ ना, तो मैं जब बहुत छोटी थी तो मुझे शास्त्रीय संगीत बहुत हैवी लगता था। मुझे चुलबुले और लोरी जैसे गाने बड़े ही अच्छे लगते, दिलचस्प लगते। और अभी जो मैंने आपको सुनाया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और देखा ना हायरे सोचा ना, ऐसे गाने जैसे ही लगते भाई, हम तो नाचने लगते जहाँ कहीं भी होते वहाँ, और सभी जो है हमें देख करके हंसते कि देखो भाई क्या ये पागल है, नाचने लगे और कूदने लगे। लेकिन यही गाने जो होते हैं ना बड़े होते समय अच्छे लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था, मुझे एंटरटेनिंग गाने बहुत ज़्यादा पसंद थे। एक्टर अमिताभ बच्चन और महमूद साहब के जो पिक्चरें थी वो मेरे जन्म से पहले आई थी, लेकिन इतनी एंटरटेनिंग थी कि सालों साल लोग उन्हें देखते, उनके गाने सुनते। और फिर मासूम फिल्म भी आई, उसके बारे में बात करेंगे लेकिन कुछ देर बाद। अभी फिलहाल भाई अमिताभ बच्चन साहब की बात की और महमूद साहब की, तो दो गाने जो अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए, क्योंकि महमूद साहब वाला एक हमने सुना, एक आगे सुनेंगे बहुत जल्द, लेकिन ये थोड़े मस्ती भरे गाने आपको सुनवा दूं तो क्या है भाई, माहौल बन जाएगा। 107.1 FM रेनबो सुन रहे हैं आप, म्यूजिकली योर्स।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

म्यूजिक कैफे चल रहा है 107.1 एफएम रेनबो पर। और दोस्तों, आप सभी जब कहीं भी आ जा रहे हों या घर पर भी बैठे हों, तो आपको बिल्कुल एक चीज बहुत परेशान कर रही होगी, और ये है बहुत ज्यादा अत्यधिक गर्मी। हम सभी जानते हैं कि हीट वेव चल रहा है, लू चल रही है, और इसलिए अपना बचाव करना बहुत जरूरी है। ये जो लू है, हीट वेव है, सभी को बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है इससे। ये हैं छोटे बच्चों और शिशु, गर्भवती महिलाएं, हृदय रोग या उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, और बाहर काम करने वाले लोग। जैसे अगर कोई मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी कर रहा है, मेसन का काम कर रहा है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। हमारे कुछ टेलर बंधु भी होते हैं जो बाहर बैठते हैं खुले में, तो उनके लिए भी ये अत्यधिक गर्मी जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति भी जो है इससे पीड़ित ज्यादा हो सकते हैं बाकी लोगों के मुकाबले। और दोस्तों, एक बात तो भूलना नहीं है, अगर आप किसी ठंडी जगह पर, गर्म जगह तक पहुंच गए ठंडी जगह से, तब भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वातावरण के अनुसार अपने आप को, अपने शरीर को ढालने के लिए कम से कम एक सप्ताह देना चाहिए। तो हफ्ता भर आपको अपना ध्यान रखना होगा। बस इन बातों का ध्यान रखिए तो आप इस लू से बच सकते हैं, खुद को और सभी को सुरक्षित रख सकते हैं। और म्यूजिक कैफे में आगे बढ़ते हुए कुछ बातें इस तरह।

हाँ है दोस्तों, उम्र के हर पड़ाव पर जो है अलग अलग किस्म के गाने संगीत अच्छा लगता है। और अभी कुछ देर पहले मैंने आप सभी से जिक्र किया अमिताभ बच्चन जी के गानों के बारे में, महमूद साहब के फिल्मों के गानों के बारे में। इतने एंटरटेनिंग और कमाल होते थे, कॉमेडी होते थे, और बचपन में ना यही सारे गाने बहुत ही अच्छे लगते थे। किशोर दा की आवाज में कॉमेडी गानों के बोल जैसे चतुर नर अभी मैं आपको सुनवाऊंगी, या फिर और कोई फनी गाना ही क्यों ना हो, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में हाफ टिकट फिल्म आई थी और कई फिल्में थी किशोर दा की, जिसके बोल इतने ज्यादा कमाल के गजब फनी थे कि आज भी अगर हम सुनेंगे इनको तो पेट पकड़ कर हंसेंगे। तो भाई ऐसी मज़ेदार फिल्में बहुत अच्छी लगती थी, हाफ टिकट, चलती का नाम, गाड़ी, पड़ोसन, और उसका कॉमेडी और गाने बस दिल में घर कर चुके थे और बात बात पर हम गा देते थे। कोई भी ऐसा सिचुएशन आता तो भाई कुछ गा लेते हम। तो यही गाने मैं आपको सुनवाने वाली हूँ। और बाकी तो खैर, जीवन में जब हम और बढ़ते हैं तो किस किस्म का संगीत अच्छा लगता है ये तो गैस करने की ज़रूरत नहीं है भाई। बचपने में कॉमेडी हो गया, और फिर यानी अपने बचपन में कॉमेडी, और फिर उसके बाद आ गई बातें जो है दोस्ती की, और फिर पड़ाव कौन सा आता है, पहले थोड़ा सा यहाँ पर मजा कर लें, उसके बाद जिंदगी के आगे के पड़ाव वाले संगीत की भी बात कर ही लेंगे। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: एक गायिका जिनकी सुंदरी आवाज में है सुकून, जिन्होंने अपनी बेमिसाल गायकी के जरिए हासिल किया सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार। उन्होंने संगीत सरिता कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां दी।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं को आरडी बर्मन साहब, गुलजार साहब और मैं आशा भोसले हम नमस्कार कर रहे हैं।
0: छाया गांगुली, जानी मानी गायिका छाया गांगुली से एक आत्मीय बातचीत।
2: 2, 3 और 4 जून 2026 को सुबह 10:02 पर सिर्फ FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, मैं हूँ वैशाली और हम सभी जो है एक म्यूजिकल सफर पर चल पड़े हैं। और कुछ वक्त पहले जैसे मैंने जिक्र किया कि भाई जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो कई सारे गाने हमें बहुत ही दिलचस्प लगते हैं। अब कॉमेडी गाने, फनी गाने, ये सारे बचपन में बहुत ही दिलचस्प लगते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी हुए, महमूद साहब हुए, जॉनी लीवर आए बाद में लेकर के कॉमेडी के बम पटाखे, और ऐसे कई सारे अनगिनत फिल्मी सितारों ने हमें बहुत हंसाया और इन पर फिल्माए गए गाने जो थे ये बड़े ही कमाल के होते थे। पर जैसे हम बड़े होने लगते हैं भाई तो लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा से शिफ्ट आने लगता है एक हमारी चॉइस में। दोस्तों टीनेज के समय शाहरुख खान की फिल्में, उनके गाने, उनका स्टाइल और उनके जैसा एक बॉयफ्रेंड कौन सी लड़की ना चाहती, तो बस अपना भी वो ही हाल था। SR के ऑलरेडी सभी के दिलों की धड़कन बन चुके थे, सलमान, आमिर, अक्षय भी टॉप के हीरोज थे, पर उम्र के उस पड़ाव पर रोमांटिक फिल्मों के हीरो शाहरुख खान यही दिल में बसते थे। रोमांस तो भाई सर चढ़कर बोलता था टीनेज में, और दीवाना फिल्म से लेकर कभी हाँ कभी ना, डर फिल्म से लेकर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है, इसने हमारे दिलों पर राज किया। अब भाई बात सिर्फ मेरी नहीं है, यानी मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ बीच बीच में, लेकिन बात हर उस टीनेजर की है जिसका दिल इन गानों को सुनकर बहुत ही अजीब तरह से धड़कता था। भाई ऐसा नहीं है कि बाद में युवा नहीं रहे, युवा तो बने ना किशोर से, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो जो टीनेज का समय होता है ना वो बहुत ही अलग ही होता है, तभी कुछ अलग सी गुदगुदियाँ होती है जो बाद में भाई थोड़ी सी प्रैक्टिकल होने लगती है। तो चलिए इससे पहले कि हम प्रैक्टिकल हो जाए और ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचे और उस जिंदगी के पड़ाव के बारे में हम सारी चीज़ें याद करें, चलो थोड़ा सा रोमांस किया जाए इन गानों के साथ। 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

म्यूजिक कैफे चल रहा है 107.1 एफएम रेनबो पर, और बस एक आखिरी गाना आप सभी के लिए प्ले होगा, लेकिन आप सभी से कुछ देर के लिए दूर होने से पहले बस यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि टीनेज जो है बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन उसके बाद जो है जिंदगी की असलियत दिखने लगती है, और ऐसे में हमारे गानों की चॉइसेस भी चेंज हो जाती हैं। वही जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वगैरह, ऐसे जो गाने होते हैं ना, ये जिंदगी का एक बहुत ही सुंदर सा चेहरा दिखाते हैं, एक बहुत प्यारी तस्वीर दिखाते हैं। पर देखो धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि लाइफ जो है ये रोमांटिक गानों वाली नहीं है, ये एक्चुअली गजलों और शेर व शायरी वाली है। इनकी बात ही कुछ और है, कम शब्दों में काफी कुछ कह जाना ये इनकी खासियत है। इनकी जो गहराई होती है वो जिंदगी के कुछ चुनिंदा हादसों इत्तफाकों बहुत सारे संघर्ष के बाद मिली कुछ कामयाबी और बहुत ज्यादा ठोकरों और दर्द दिल के बाद ही समझ में आती है। अपना मामला भी कुछ ऐसा ही रहा, तमाम कोशिशों के बावजूद जब अपने चुने हुए काम में सफलता नहीं मिली, जब जिंदगी ने अनचाहे मोड़ लिए, जब दुनिया जमाने ने धकेला वहां जहां जाने की चाहत ही ना थी, तब भाई समझ में आया कि जिंदगी क्या चीज है। जब अपनों ने ना समझा और दोस्त पीठ पीछे कुछ और ही निकले, तब शायरों के दर्द भरी बातों की गहराई समझ में आई, और जीवन बस वो ही बन के रह गया जहां पर जो असली है और असलियत है वही भाने लगा। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, ये गाना जो है जिंदगी के नाम।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। हिट एंड हॉट शुरू हो चुका है और ये वो समय है दिन का जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। आपके दिल की बातें पेश करेंगे आपकी पसंद के हिट एंड हॉट गानों के साथ 107.1 एफएम रेनबो पर। मैं हूं वैशाली और आप सभी के साथ इस घंटे बनी रहूंगी। और भाई, जो बातें कुछ समय से हम आपसे करते आ रहे हैं आज के दिन और अभी कुछ दिनों तक करते रहेंगे, वो है आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सलाह वाली बातें। देखिए दोस्तों, अत्यधिक गर्मी है, लू चल रहा है और ऐसे में कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, अब क्या क्या चीज़ें करनी है ये तो आप समझ गए, लेकिन क्या चीज़ें नहीं करनी है उस पर भी तो कुछ गौर करें। दोस्तों, दोपहर 12 से 3 बजे तक धूप में निकलने से बचे। जो भी काम है एक तो पहले कर लीजिए या बाद में कर लीजिए, और घर के भीतर किसी बिल्डिंग के भीतर ही रहिएगा इन 3 घंटों में। दोपहर के समय भारी काम ना करें जिससे बहुत ज़्यादा आपको पसीना आए, बहुत ज़्यादा थकावट हो और फिर चक्कर या वीकनेस आ जाए, तो ऐसी चीज़ों से बचना है। भीड़ भाड़ और जो है बिना हवा वाली जगहों पर नहीं जाना है। बाकी जो मद्यपान है, शराब है, चाय है, कॉफ़ी है और अधिक चीनी वाली शीतल पेय जो है इनसे भी बचना है, क्योंकि शुगर से आपको प्यास ज़्यादा लग सकती है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अधिक प्रोटीन वाले और भाई बासी भोजन से बचें इस समय। बच्चों और पालतू जानवरों को भी जो है बंद किसी भी वाहन में, व्हीकल में आप अकेला ना छोड़े, इससे इन्हें सफोकेशन हो सकता है, ये बेहोश हो सकते हैं या ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो इन सारी समस्याओं से बचें। क्या नहीं करना इस गर्मी में, इस अत्याधिक लू वाली गर्मी में, ये चीजें हम आपके साथ साझा कर रहे थे। बने रहें। और भाई, मुझे कॉल आया पंकज मोहड़ इनका, और मेरी और एक हमारे श्रोता से बात हुई जिनका नाम है राजकुमार कुंभार। आप सभी का, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों शो बहुत इंजॉय कर रहे हैं और पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगा दिल को जानकर ये बात। पंकज मोहर जी काफ़ी सारी चीज़ें लिखते हैं हमें और समय समय पर ये हैं, और हमारे एक और श्रोता है प्रकाश शिंदे जी, ये हर समय के अनुसार हमें मैसेजेस भेजते हैं। तो इन्होंने काफ़ी पहले से भेजना शुरू किया था, लेकिन अभी अगर बताओ इनकी बातें तो ये लिखते हैं, मुझे पुराने गाने बहुत ज़्यादा पसंद है, पल पल दिल के पास, ये सारे 90s के गाने, ये मेरे म्यूज़िकल दुनिया में गाने रहते हैं। और साथ ही साथ बोलते हैं रोमांटिक एवरग्रीन मेलोडियस गाने, गोल्डन ईरा के गाने सारे ही पसंद है। और लिखते हैं कि 90s के दशक में गोविंदा के गीत और डांसेस बहुत ही अच्छे लगते थे उन्हें, और अभिनेता गोविंदा जी भी बहुत पसंद है। वाह, क्या बात है। और इन्होंने काफी कुछ लिखा है कि गाने जो है इनका

जीवन है, सुबह 4 बजे उठते हैं तभी से जो है ये गाने सुनने लगते हैं, रात को सोने से पहले तक, इवन खेतों में ये गाने सुनते हैं पूरा दिन। वाह क्या बात है। और मेरी बात हुई राजेंद्र कुंभार जी से, राजकुमार कुंभार जी से, ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं गानों को, एफएम रेनबो को, मेरा शो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, उनको पूरा सारा जो था, इन्हें दोनों को भी बहुत अच्छा लगा। कहानियाँ किसे पसंद नहीं आती, तो इन्हें भी कहानियाँ बहुत अच्छी लगी है। तो राजकुमार कुंभार जी का मुझे अभी तक जो है गाने की फरमाइश वाला मैसेज नहीं आया है। साथ ही साथ राजेंद्र जुठानी जी भी हमारे से कांदीवली वेस्ट से जुड़े हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं शो को, और ये पूछ रहे कौन सी वैशाली। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मैं हूं आरजे वैशाली परेख, और एक हमारी आरजे हैं वैशाली गुप्ता। तो ये है फर्क, और आपको बस मैंने बता दिया, और बाकी आप सभी जुड़े हुए हैं। हमें शंकराचार्य जी का मैसेज आया तेलंगाना से, और शोज को बहुत एंजॉय करें। विजय महोबिया जी ने भी बहुत पहले मैसेज करके नीली नीली आंखें इस गाने की फरमाइश भेजी है, तो वो सबसे पहले प्ले करेंगे। और हमें मैसेज आया है राजेश मोरे जी का वर्ली कोड़ीवाड़ा से, और ये गाने एंजॉय करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: एक गायिका जिनकी सूंधी आवाज में है सुकून, जिन्होंने अपनी बेमिसाल गायकी के जरिए हासिल किया सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: आपकी याद आती रही।
0: उन्होंने संगीत सरिता कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां दी।
2: संगीत सरिता के श्रोताओं को आरडी बर्मन साहब, गुलजार साहब और मैं आशा भोसले हम नमस्कार कर रहे हैं।
0: छाया गांगुली जानी मानी गायिका छाया गांगुली से एक आत्मीय बातचीत।
3: 2, 3 और 4 जून 2026 को सुबह 10:02 पर सिर्फ FM रेनबो 107.1 MHz पर।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो और हिट एंड हॉट चल रहा है। यहाँ पर आप सभी की फरमाइशें आ पहुंची है और एक एक करके मैं प्ले करने वाली हूँ। तो देखिए, मेरी अभी अभी बात हुई हमारे श्रोता प्रकाश शिंदे इनसे, और भाई इन्होंने कई सारी चीज़ें कही, बहुत सारी बातें ये हमेशा लिख भेजते हैं, तो वो भी चीज़ें थी। लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी जो मैं गाने कुछ देर में प्ले करने वाली हूँ, ये है फरमाइश जो आई हुई अक्सर इस दुनिया में, फिल्म धड़कन का गाना मैं प्ले करने वाली हूँ, तो ये रहेगा। और साथ ही साथ डॉक्टर अंजू का मुझे मैसेज आया है और ये काफ़ी कुछ लिख भेजती है कि मुझे पुराने गाने बहुत पसंद हैं और आज भी जो है ओल्ड सॉन्ग सुनकर बहुत खुशी होती है। फिर उन्होंने लिखा है कि हाँ बिल्कुल, हम सभी को जो है ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है अभी गर्मियों की वजह से। पानी का बॉटल साथ में रखना है, इलेक्ट्रोल पाउडर रखना है साथ में, और इसे घोल के ड्रिंक बना के अच्छे से ये पीना है, और नींबू पानी ही क्यों ना हो, बहुत सारा कुछ जो है हमें फ्लूइड अच्छे वाले जो होते हैं वो पीते रहना है हाइड्रेटेड रहने के लिए। क्या बात है। और डॉक्टर अंजू रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर है, तो ये हमेशा हमें समय समय पर स्वास्थ्य से संबंधित बातें बताती रहती है, अपने जीवन के बारे में बहुत चीज़ें शेयर करती रहती है। थैंक यू सो मच। अजय साखरे जी भी इंजॉय कर रहे हैं गाना, कोशिश करूंगी आपका गाना प्ले करने की। और यहाँ पर जो है हमें पंकज मोहर जी ने भी जो मैसेज भेजा था उसके साथ अक्सर इस दुनिया में ये गाना इनका प्ले करना बाकी है, वो मैं प्ले कर दूंगी अभी। और मैं देख रही हूँ और भी हमारे जो श्रोता हैं उनकी मैसेजेस पर मेरी निगाहें टिकी हुई है, बनी हुई है। तो यहाँ पर जो है हमें प्रकाश शिंदे जी ने भी कॉल किया और बहुत सारी बातें शेयर की। इन्होंने कहा कि गाने बहुत इंजॉय करते हैं हमेशा, और आज जो है कोइंसिडेंटली लिखते हैं कि दुश्मन फिल्म को जो है आज के दिन ये रिलीज हुई थी, और इसे जो है काफी साल अभी हो गए, मैं देख रही हूँ कितने साल हुए और गिनना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं इनके मैसेज में ढूंढ रही हूँ। तो लिखते हैं कि 1998 में दुश्मन फिल्म रिलीज हुई थी। और भी बातें इन्होंने लिखी है, मिस्टर इंडिया जो है ये भी जो है रिलीज हुई थी 25 मई को और 29 को हर जगह रिलीज हुई थी। वाह क्या बात है, ये सारी जानकारी आप रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। डांस डांस के बारे में भी भेजा है कि 39 ईयर्स हुए हैं इसके रिलीज को, वाह क्या बात है, 39 साल पहले रिलीज हुई थी। लिखते हैं मैं 90s का बच्चा हूँ, बचपन में 90s का संगीत सुनता था, वो इतना खूबसूरत था और आज भी उतना ही खूबसूरत और फ्रेश लगता है। मेरी संगीत की पहली पसंद 90s का संगीत है, फिर रेट्रो और फिर जो नया संगीत है वो। तो लिखते हैं नए गानों के शोर में वो बात कहाँ मिलती है, 90 के तरानों में ही रूह को राहत मिलती है, जहाँ लव्स सी

पर हमें मैसेज आया है और भी हमारे श्रोताओं का, राम प्रजापति जी, प्रदीप अनंत कृष्णन जी, शुभदा जी और एक श्रोता है जिनका नाम नहीं मिल रहा मुझे, तो हाँ ये है अनिल करड़े बोलिंस विरार से, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ये कुछ गाने आप सभी के लिए प्ले होंगे जिसमें गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, फिरोज सिगनपुरिया जी की फरमाइश है और इन्होंने लिखा है कि मैं आपकी बात से इत्तफाक रखता हूँ, मुझे भी जो है बचपन में कॉमेडी वीडियोज और कॉमेडी गाने बहुत पसंद थे और लिखा है इन्होंने कि कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, तो इनके लिए मैं प्ले करने वाली हूँ गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। तो बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: एक गायिका जिनकी सूंधी आवाज में है सुकून, जिन्होंने अपनी बेमिसाल गायकी के जरिए हासिल किया सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: आपकी याद आती रही।
0: उन्होंने संगीत सरिता कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां दी।
2: संगीत सरिता के श्रोताओं को आर डी बर्मन साहब।

आप सुन रहे हैं हिट एंड हॉट 107.1 एफएम रेनबो पर. मैं हूं वैशाली और बहुत जल्द विदा लेने का समय आएगा, लेकिन उससे पहले जो आपसे वादा किया वो निभाना तो पड़ेगा. तो अभी मैं प्ले करने वाली हूँ पंकज मोहड़, इनका गाना अक्सर इस दुनिया में, जिसके बाद जो है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम. ये गाना मैं प्ले करने वाली हूँ राम प्रजापति जी के लिए. आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है. आपको शादी की सालगिरह के ढेर सारी शुभकामनाएं. तो ये डेडिकेट करना चाहते हैं अपने पत्नी को, ये गाना बहुत प्यार करते हैं. और फिर है गाना हवा हवाई, जो है प्रकाश शिंदे जी की फरमाइश. तो आप सभी बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स.

हिट एंड हॉट चल रहा है 107.1 FM रेनबो पर और आप सभी को बेसब्री से इंतजार है अपने गाने का. मैं जानती हूँ लेकिन सारे गाने हम नहीं प्ले कर पाएंगे क्योंकि समय की सीमा है, वक्त की कमी है. लेकिन बावजूद इसके अब जो गाना हम प्ले करने वाले हैं ये जो है मैं देख रही हूँ किनकी फरमाइश है. तो यहाँ पर मुझे अजमेर राजस्थान से मैसेज आया हुआ है और इनका नाम आई थिंक है महेश. मैं वही ढूंढ रही हूँ कि इनका मैसेज कहाँ गया है. तो इनका गाना मैं प्ले करने वाली हूँ और साथ ही साथ हमारे और भी श्रोता है. हितेंद्र दास जी हैं, इनका भी मैसेज आया है. अजय साखरे जी का भी मैसेज आया है. असम से हितेंद्र दास जी सुनना चाहते हैं चिंता दा चिता चिता. कोशिश करूंगी बिल्कुल कि आपका गाना प्ले हो क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और सारे ही श्रोताओं की फरमाइशें हैं. डॉक्टर स्नेहा सिसोदिया भी हमें मैसेज करती है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैसेज के लिए. और जो है हमारे अजमेर के लिसनर है, हाँ महेश बोहरा जी, इन्होंने फरमाइश की है कभी तू छलिया लगता है पत्थर के फूल इस फिल्म के गाने की. और बाकी हमारे जो तमाम श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं लेकिन हम उनकी फरमाइशें नहीं प्ले कर पाएंगे, उनमें से है हीरामणि वर्मा जी जो अपने परिवार के साथ बने हुए हैं. शुभलक्ष्मी मस्तकर जी लिखती है गाने एंजॉय कर रही हैं, आराधना का गाना वगैरह बहुत पसंद है. मंगेश म्हात्रे जी और दादर से ये सुन रहे हैं, धन्यवाद. लिखते हैं गर्मी से बचने की कोशिश करना जरूरी है. संजय दर्शन जी लिखते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये स्लोगन को सही कर रहे हो आप, वातावरण के अनुसार सबको निवेदित कर रहे हैं, थैंक्स. और संगीत तो समय अनुसार समझ अनुसार और शब्दों के अनुसार पसंद आता है, बाकी गोल्डन ईरा के एवरग्रीन गाने हमेशा पसंद आते हैं, क्या बात है. फिर हमें मैसेज आया है ओमकार सुब्रमणियन अय्यर इनका और ये लिखते हैं हमें मैसेज बदलापुर से और ये भी गाना सुनना चाहते हैं. लिखते हैं थैंक यू फॉर

शोइंग कंपैशन एंड केयर टुवर्ड्स एनिमल, यानी जानवरों के प्रति आप जो है बहुत संवेदनशीलता दिखा रही हैं, उसके लिए धन्यवाद। और हम बस कोशिश कर सकते हैं कि हम ध्यान रखें और अवेयरनेस स्प्रेड करें। राजेंद्र परमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और अपनी फरमाइश भेजते हैं और लिखते हैं कि म्यूजिक कैफे में बहुत खूबसूरत गानों को बहुत पसंद किया, और लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, मनभावन गीत सुनने मिले। और आपका गाना मैं प्ले नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, 5 मिनट है और 2 गाने हैं, तो मुझे लगता है एक ही प्ले हो पाएगा अभी इस समय। संदीप कुमार जी हमें मैसेज करते हैं जालंधर से और ये भी फरमाइश सुनना चाहते हैं, तो बहुत सारी बातें इन्होंने भी लिखी हैं, धन्यवाद आपका। और मुकेश कश्यप जी, आर्यन सोमवंशी, राकेश माथुर जी, वीरेंद्र घाटोल जी, प्रमोद चिंचोलकर जी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ और भी लोग हैं जो बने हुए हैं यहाँ पर हमारे साथ। राजकुमार कुंभार जी का अभी आया है मैसेज, तो अभी तो समय की कमी है तो मैं आप सभी से विदा लूंगी। उससे पहले देख रही हूँ दिग्दर्शन और कविता, इन्होंने मेरठ से हमें फरमाइश भेजी है, तो ये हुआ कि जो गाने बाद में आए वो नहीं प्ले हो पाएंगे, इसका खेद रहेगा। शुभदा जी लिखती हैं कि इन्हें भी गाना सुनना है, स्टोरीज और म्यूजिक कैफे का कलेक्शन बहुत अच्छा लगा और नींबू पानी जरूर पिए इस गर्मी में इससे बचने के लिए, ऐसे उन्होंने लिखा है। प्रदीप अनंत कृष्णन जी की भी फरमाइश हम नहीं प्ले कर पाएंगे लेकिन ये बहुत इंजॉय कर रहे सारे गानों को, ये इन्होंने लिख भेजा है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और आप हमसे जुड़ सकते हैं सुनने के लिए, पूरा दिन तो वैसे ही सुन सकते हैं आप, लेकिन शाम को 7 से 8 के बीच फरमाइशी जो है कार्यक्रम होता है और आप अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं। मैं हूं वैशाली और मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगी बहुत जल्द किसी दिन आने वाले हफ्ते शायद आप सभी से 107.1 FM रेनबो पर। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, खाना पीना सारी चीजों का ध्यान रखिए और इस गर्मी में भी बहुत ही ठंडे ठंडे और कूल कूल बने रहिए, क्योंकि आपको जो है सही रहना है, स्वस्थ रहना है और ये हो सकता है सिर्फ 107.1 FM रेनबो के गाने सुनकर। अभी दीजिए मुझे इजाजत, बने रहे, सुनते रहें।

0: And Indian sprinter Anupam wins bronze in women's 100 meter at under 20 Asian Athletics Championships in Hong Kong. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्प्रिंटक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे

0: होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
1: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन में, आईआईटी, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए पर बातचीत

इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPS समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने दो थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र

0: करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी.
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी. अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए.
3: पक्का. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in. हर घर

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: हेलो एंड वेलकम. 5:02 का वक्त और आप लुत्फंदोज होना शुरू हो चुके हैं अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ लव यू जिंदगी में. और लव यू जिंदगी में केवल आदित्य ही आपके साथ नहीं है, आदित्य का स्क्वायर आपके साथ होगा, एक और आदित्य भी हमारे साथ होंगे. अगली आवाज़ आप सुनेंगे दूसरे आदित्य की.
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे आदित्य, आप सभी का दोस्त. चाय की चुस्कियाँ हो या हो रसीले आमों से भरी टोकरियाँ, दोनों देती है हमें एक सा एहसास, सुकून और आनंद का. वाह ताज कहे या वाह रस भरे आम कहे, एहसास समाधान का ही होता है. ऐसे ही मन लुभाने वाले गीत हम पेश करते हैं अपने इस लव यू जिंदगी कार्यक्रम में. तो शुरू करते हैं इस सेगमेंट को पहले गीत से.

0: Billy, Billy, Billy, Billy.
1: तो दोस्तों, इस गीत के साथ लाइफ को देते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट। बात करते हैं उन पलों की, उस खूबसूरत एहसास की, जब प्यार, इश्क यानी लव, जब जिंदगी में कदम रखता है। उस हसीन पल के बाद जिंदगी की बात ही अगर कहे तो एक अलग ही एहसास, एक अलग ही रंग चढ़ जाता है जिंदगी में। आप सभी श्रोतागण मेरी इस बात से सहमत जरूर होंगे। तो यही आपके हसीन पल, वो हसीन यादें हमसे साझा कीजिए व्हाट्सएप के जरिए, बिना कोई वक्त जायर करे। नंबर है 8657661071। फिर दोहराता हूं, 8657661071। तो लिख भेजिए हमें आपके उन हसीन पलों की दास्तां, जब आपको प्यार हुआ था।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जनगणना में पहली पारी
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

तो जिस पल ये इश्क प्यार वाला लव हमारी जिंदगी में कदम रखता है, जिंदगी संवर जाती है, धड़कने बढ़ जाती है, बॉडी क्लॉक बिगड़ जाती है, नींद रात में आती नहीं, चैन दिन में रहता नहीं। किसी के साथ चलते हुए भी हवा में उड़ रहे हो ऐसा लगने लगता है, और फिर हम गुनगुनाने लगते हैं ऐसे कुछ गाने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो लाइफ के उस लव की हमें फिर आदत पड़ जाती है, हम उस लव लाइफ की टेस्ट चखने लगते हैं और वो लव लाइफ भी हमारी टेस्ट लेने लगती है। फिर हम कहने लगते हैं,

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं। तो इश्क में आशा तो बहुत रख लेता है हर दीवाना इंसान, लेकिन हर आशा पूरी ही हो ऐसा नहीं होता। फिर कुछ दिल टूट जाते हैं, फिर मनाए भी जाते हैं उन्हें, रुठाव होते हैं, कुछ ठहराव आते हैं, फिर अपने आप को समझाना पड़ता है, दिल मिलाना भी पड़ता है, और इन सभी संस्कारों के बाद दिल फिर मान भी जाता है, या इसी बीच कुछ नए दिल भी मिल जाते हैं। ये सब चीजें जो हैं ये थोड़ी क्या बोलते हैं उसे, एक डिफिकल्ट लगती है। और इसी बात पे एक गाना भी हमें याद आ जाता है, सुनते हैं वही गाना।

0: तो स्टूडियो के घड़ी में टाइम हुआ है 5:51 और कार्यक्रम शुरू है लव यू जिंदगी। शुरुआत में कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपसे गुजारिश की थी कि आपके मोहब्बत की शुरुआती पलों की और कुछ मैसेजेस मैं पढ़ के सुनाता हूं। तो पहली बात तो हमारे संजय दर्शन जी हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ एक सूरज आज फलक पर हम सह नहीं पा रहे, इतनी गर्मी, झुलसती गर्मी जो हो रही है, और यहाँ स्टूडियो में हम दो दो आदित्य यहाँ हाजिर है। तो उन्हें
1: बहुत बहुत शुक्रिया संजय दर्शन जी आपकी इस तारीफ का।
0: दूसरा जो है वो मतलब धनंजय जी है नवी मुंबई से, वो कहते हैं कि उन्हें प्यार हुआ था डबल डेकर बस में। वाह, वो क्या दिन थे डबल डेकर बस के। हालांकि अभी मुंबई में डबल डेकर बस की वापसी हो रही है, लेकिन उस वक्त जो था वो उन्हें डबल डेकर बस में प्यार हुआ था। वो ऊपर जाके बैठे थे और वो भी उनकी कोई खास जो व्यक्ति थी वो भी ऊपर आके बैठ गई और दूसरे इन्होंने एक दूसरे को देखते देखते ही उन्हें प्यार हुआ। और प्रणव शिंदे जी भी है, वो भी हमें कह रहे हैं कि दो दो आदित्य जी हैं तो डबल धमाल है स्टूडियो में, ऐसा उनका कहना है। तो धन्यवाद

धन्यवाद प्रणव जी। महेश बोहरा जी हैं, इन्होंने एक अलग नजरिए से प्यार की तरफ एक मैसेज हमें किया है कि बचपन में उन्हें समझ आई कि उन्हें पता चला कि उनके माता पिता और उनके बीच कितना प्यार है और यही प्यार आज भी उनका बरकरार है। और मैं उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि यही प्यार बरकरार रहे। तो इसी के साथ हम अगला गाना भी सुनते हैं और फिर इस कार्यक्रम की समाप्ति हम करेंगे और उस कार्यक्रम के बाद अपना न्यूज़ जो है मराठी में न्यूज़ आएंगे नागपुर स्टेशन से और फिर हम शुरू करेंगे अपना नया अलग अंदाज़े बयां ये कार्यक्रम, जिसमें मेरे साथ आदित्य जी हैं, वो जो है वो कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। तो सुनते हैं ये गाना।

सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। नमस्कार, आप लुत्फंदोज होना शुरू हो चुके हैं 107.1 FM रेनबो पर। अंदाजे बयां में अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ। आज बात एक ऐसे शायर की जिसके मिजाज में सादापन और हुनर में ऐसी खुवत कि वो जिस तरफ भी चल पड़ा उसने रास्तों को अपने जानिब मोड़ लिया। बात उर्दू शायरी को नए सिरे से लोकप्रिय करने वाले शायर डॉक्टर बशीर बद्र की। फरमाते हैं, सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। मांगा खुदा से रात दिन, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। सोचा तुझे, देखा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे। मेरी खता मेरी वफा, तेरी खता कुछ भी नहीं।

15 फरवरी 1935 को यूपी के अयोध्या में डॉक्टर बशीर बद्र की पैदाइश हुई और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा और पीएचडी पूरी की। एक दिलचस्प वाकया है कि जब इन्होंने एमए में दाखिला लिया तब कोर्स में ये पढ़ाए भी जाते रहे और एग्ज़ाम देने गए तो पर्चे में एक शेर का अर्थ लिखना था। इन्होंने लिखा भी और शेर किसी और का नहीं, इनका खुद का शेर था। कुछ ऐसे शेर, कुछ ऐसे एहसासात जिसकी तर्जुमानी शायद ही कभी हो सके, उनको बशीर बद्र साहब ने अपने कलम से कागज पर दर्ज किया और वो हम लोगों के दिलों पर हमेशा के लिए दर्ज हो गए। फरमाते हैं कि न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, उजालों की परियां नहाने लगी, नदी गुनगुनाई ख्यालात की।

हर फिल्म की होती है एक कहानी, और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी। मूवी माइलस्टोन, हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां, पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर मूवी माइलस्टोन।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जिंदगी की जद्दोजहद हो या राजनीतिक सरगर्मियां, या हो उल्फत, मोहब्बत, चाहत, अकीदत की बातें, सभी एहसासात को बशीरवंत साहब ने अपनी शायरी में समोया। एक तरफ राजनीतिक हालात को बयां करते हुए उन्होंने ये शेर लिखा जो आज भी रेलिवेंट है। फरमाया कि दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो वहीं इश्क को इबादत का दर्जा दिया और फरमाया, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, खुदा से रोज तुमको मांगता हूं, मेरी चाहत इबादत हो गई है। और फिर ये गजल रात आंखों में ढली। सुनिए, ज्यादा बोलकर आपका मजाक खराब नहीं करना चाहते।

28 मई कल का दिन, ये वो दिन रहा जब इस अजीम शायर ने खुदा की महफिल को शेर सुखन से सजाने का रुख कर लिया और इस दुनियाए फानी को अलविदा कह दिया। लेकिन कलाकार कहाँ मरते हैं, वो हमेशा अपने क्राफ्ट में, अपने कला में हमेशा जीवित रहते हैं। और इस शायर ने फरमाया भी है कि कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। हम भी यही कहते हैं आपसे, एक अगले मोड़ पर आपसे फिर से मुलाकात होगी समाचार के अंतराल के उस पार। तब तक के लिए एक बेहद खूबसूरत सी गजल चंदन दास की आवाज में।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: जी 7:11 का वक्त और आप लुत्फंदोज होना शुरू हो चुके हैं आपके अपने प्रोग्राम में हम तुम में, जहां पर बातें होती हैं आपकी और इस प्रोग्राम की पूरी स्क्रिप्टिंग भी आपके हाथ में होती है, बस हम उसे आप तक वापस पहुंचाते हैं, है ना। और आज हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक और आदित्य हैं, यानी आदित्य का स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा इस प्रोग्राम में। तो हम चाहते हैं कि आदित्य भी अपनी बातें कुछ रखें। तो जी आदित्य,
2: तो आदित्य मैं बोल रहा हूँ आदित्य आज मैं सुबह से सोच रहा था कि मैं आपको जब बुलाऊं तो कैसे कैसे ये कॉन्वर्सेशन कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी तक का शो जो है काफी श्रोताओं में स्वागत भी किया है, काफी शो दोनों शो अपने पिछले दोनों शो पसंद आए हैं। और बशीर बद्र जी का जो हमने एक स्मरण में उनके
1: श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि
2: जो दी थी वो भी बहुत श्रोताओं को पसंद आई है। तो अभी हम शुरू करेंगे कुछ गानों से जो कि फरमाए हैं अपने
1: जी। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं और जो आदित्य हमारे पीसी से थोड़ा सा दूर बैठे हैं तो उन्हें नाम पढ़ने को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए नाम पढ़कर हम बता देते हैं। हमारे पास हीरामणि साहब का मैसेज आ गया है और महाराज कीर्तनपुरी जी का मैसेज भी आ गया है, महेश बोरा साहब का मैसेज आ गया है, विजेंद्र जी का मैसेज आया है, सुशील यादव जी, संजय दर्शन जी, हितेंद्र दास जी, प्रणव शिंदे साहब, राम प्रजापति, राकेश माथुर साहब, अजय साखरे साहब, दिग्दर्शन कविता, पंकज मोहन जी, फिरोज सिगानपोरिया और शुभदा जी, वैदेही जी, राजेंद्र परमार जी, धनंजय जी, विश्वनाथ जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हम। आप और आपके तमाम सारे गाने भी हमको मिलना शुरू हो चुके हैं, इनफैक्ट इस प्रोग्राम के शुरू होने के पहले ही हमें बहुत सारे गाने मिल चुके थे और उन्हीं में से सबसे खूबसूरत सा गाना हमने चुन लिया है और वो आप तक पहुंचने के लिए बिल्कुल बेताब है। अब देखिए, मौसम आशिकाना हो या ना हो, लेकिन हम इस गाने से थोड़ा सा मौसम आशिकाना करने की कोशिश करते हैं, हमारे कानों को तो कम से कम सुकून मिले ही मिले। और अब धीरे धीरे शाम अपने उरूज पर है तो थोड़ा थोड़ा आपको ठंडक का एहसास भी होने लगा होगा और अब आपको कुछ बेहतर भी महसूस हो रहा होगा। तो इस गाने से आप थोड़ा

0: 7:18 का वक्त और ये वक्त है हम तुम का, यानी हम और आप मिलकर इस प्रोग्राम को बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ एक साथी और हैं,
1: अजय आदित्य।
0: हाँ, आपका माइक हम बार बार ऑन करना भूल जाते हैं, हमारे लिए माजरत। और जी, आप कुछ नाम पढ़कर बताएं कि किनका किनका मैसेजेस हमको मिल रहे हैं। कुछ
1: प्रदीप अनंत कृष्ण जी हैं, शुभदा जी हैं, मीना जी हैं और मुकेश कश्यप जी हैं। इन सारे लिसनर्स ने साथ साथ भारती और दुर्गेश जी भी हैं, सुशील यादव, रेणु यादव जी हैं, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी जी भी हैं, हीरामणि वर्मा जी हैं, ऐसे कई श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
0: जी, आप सभी का इस्तकबाल है और आप सभी के मैसेजेस पर हम लोगों की पैनी नज़र है। और कुछ नए लोग भी हम तक जुड़ गए हैं और कुछ पुराने लोग जिनके गाने हम ऑलरेडी क्यू कर चुके हैं। तो उसी फहरिस्त में हम अगला गाना किनका सुनवाने वाले हैं उन पर चलते हैं हम। कौन सा गाना है वो?
1: अजय जी का जो है, मोहब्बत बड़े काम की चीज है।
0: जी, ये गाना नहीं, ये जिंदगी की सीख है। मोहब्बत वाकई में बहुत काम की चीज है। मोहब्बत करते रहिए, मोहब्बत से लबरेज रहिए, मोहब्बत में डूबे रहिए और ये मोहब्बत हम तक भी पहुंचाते रहिए। कैसे पहुंचा सकते हैं आप ये मोहब्बत हम तक? व्हाट्सएप के जरिए। नंबर क्या है हमारा? 8657661071, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हम यहाँ पर बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं।

0: बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे नए नए नाम हमारी फहरिस्त में शामिल होते चले जा रहे हैं, और हम चाहते हैं जो नया नाम हमारे साथ हमारे बगल में कुर्सी पे विराजमान है वो कुछ नए नाम पढ़कर बताएं। जैसे कि एक नाम है ये
1: धनंजय जी हैं नवी मुंबई से, और जी हाँ स्क्रॉल कीजिए, वो तो मीना जी है, बाद में सुशील यादव, रेणु यादव जी है, ऐसे कई श्रोता, भारती है, दुर्गेश जी हैं।
0: जी तो ये कुछ नए नाम हमारी फहरिस्त में शामिल हुए, और ये सब क्या अर्ज कर रहे हैं उन पर भी चलेंगे। और प्रदीप अनंत कृष्ण साहब अर्ज करते हैं कि चेंबूर से आप हमें मैसेज कर रहे हैं और आपने कुछ गाने की फरमाइश भी भेजी है और सेकंड ऑप्शन भी भेजा है, ये बहुत अच्छी बात है। जो दूसरे लोग भी हमें सुन रहे हैं वो भी ऐसा करें तो बहुत अच्छा होगा कि हर गाने का अगर आप सेकंड ऑप्शन भेजेंगे तो ये बहुत खूबसूरत बात होगी, और खूबसूरत बात से खूबसूरत गाना भी जुड़ गया। पंकज मोहत साहब ने बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश हमको भेजी है, बगैर देरी उस गाने से हम आपको जोड़ते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जी बहुत ही रफ्तार के साथ मैसेजेस हमारे पास आते जा रहे हैं और कुछ लोग मैच के दीवाने क्रिकेट मैच के, तो वो क्रिकेट की बातें भी हम तक पहुंचा रहे हैं। और मीना जी की पसंदीदा टीम भी आपने बता दी है कि जीटी को आप पसंद कर रही हैं और आपका गाना भी बहुत खूबसूरत है, आपको जल्दी ही सुनने को मिलेगा। और फिलहाल तो जो लास्ट गाना आपने सुना दीवाना में चला, वो विजेंद्र जी की फरमाइश का गाना था, बहुत ही खूबसूरत से गाने की फरमाइश आपने हमें भेजी। और अब जो गाना आप सुनेंगे वो है संजय दर्शन जी की फरमाइश का गाना। और प्रोग्राम के इब्तिदा के साथ ही इनके फ़ोन से इस प्रोग्राम के इब्तिदा हुई थी, शुरुआत हुई थी, और इनका फ़ोन कॉल हमारे पास आया और आपने फ़ोन कॉल के ज़रिए इस गाने की फरमाइश भेजी, जो बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। हम बग़ैर देरी इस गाने को आप तक पहुंचाते हैं। और कुछ नए नाम भी हमारे साथ इस फहरिस्त में शामिल हो रहे हैं, तो वो भी हम पढ़ देना चाहते हैं। विट्ठल मुंग से नगर से हमें मैसेज आया है, आपने अपना नाम नहीं लिखा है। अच्छा, आपने अपना नाम ही लिखा, ओके, फिर आगे नगर भी लिख दिया है, तो इनका मैसेज भी हमारे पास आ गया है। और विजेंद्र जी का हमारे पास थैंक यू आ गया है, साथ ही प्रणव शिंदे जी के बहुत सारे फूल आ गए हैं और बहुत सारी एक लंबी सी फहरिस्त आ गई है गानों की। और जी एक और मैसेज हमारे पास आया है, आरती जी मुंबई से मैसेज कर रही हैं और आप बशीर बद्र साहब का प्रोग्राम पसंद किया आपने, बहुत शुक्रिया आपको इसके लिए। और धनंजय जी अर्ज़ करते हैं कि सर जी हम भी जुड़े हैं आपसे, जी हम भी आपसे जुड़े हैं, आप नवी मुंबई वासी से हमको मैसेज करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी। मूवी माइलस्टोन, हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां, पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर मूवी माइलस्टोन।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कागद पेन नहीं या वेड़ी, मोबाइल सा नवा उपक्रम आए, विवरण आनी मा

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: सात बजकर 48 मिनट का वक्त और ये वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है. इससे पहले कि और ज़्यादा गुजर जाए, हम आपको एक और खूबसूरत से गाने से जोड़ते हैं जो फरमाइश के लिए भेजा है हमारे पास. किसने वो बताएंगे? हमारे पास आदित्य.
2: ये भेजा है विट्ठल मुंगसे जी नगर से. सुनते हैं ये गाना.

0: वक्त और ये वक्त फिलहाल यहाँ से विदा लेने का है, और फिर हम माजरत चाहेंगे बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे गाने बस हम देखते ही रह गए और वक्त गुजर गया। फिलहाल के लिए माजरत चाहेंगे, और 31 तारीख यानी परसों 5 से 8 का वक्त फिर हम आपको देंगे, और फिर जिन लोगों के मैसेजेस हम नहीं पढ़ पाए या जिन लोगों के गाने हम नहीं प्ले कर पाए उनको पहली प्रेफरेंस रहेगी। फिलहाल तो हम ये गाना सुनवाने वाले हैं, ये किनका गाना है, ए हैरते, ये गाने की फरमाइश हमको भेजी है शुभदा जी ने, और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, आप सुनिए इसका लुत्फ लीजिए, और फिलहाल के लिए हमें यानी आदित्य को, और
1: आदित्य को
0: फिर से बोलिए,
1: और आदित्य को
0: जी आदित्य आदित्य को यानी आदित्य स्क्वायर को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं, शुक्रिया।

0: देश की 94% से लेस यानी सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है और उत्तर पश्चिम भारत में 92% से कम यानी वहां भी सामान्य से कम बारिश होने का ज्यादा संभावना है।
1: ठळक बातम्या पुनः एकदा। देशात 2.5 लाख क्विंटलचा बियाणे साठा निर्माण केल्याची केंद्रीय कृषी मंत्र्यांची माहिती। 31 ऑगस्ट 2028 पूर्वी TET उत्तीर्ण होणं शिक्षकांसाठी बंधनकारक। देशात LPGचा 30 दिवसांचा राखीव साठा निर्माण करण्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाचे निर्देश। आणि IPLच्या पात्रता फेरीत गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात सामना सुरू। याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे राष्ट्रीय बातमीपत्र संपलं। नमस्कार।

0: पर सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों

पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्य तंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा

पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंकी विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग हई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिले तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अगर मैं इस ख्याल को ही बदल दूं कि आपको कोई गम है इसलिए आप मुस्कुरा रहे हैं, हो सकता है कि आपको इस बात की खुशी भी हो कि मैं आपसे मिलने आया हूं। मेरा नाम विकास है और मैं आपके साथ सजाने के लिए आया हूं बहुत ही प्यारी गजलों की रंग महफिल। कहां आप जानते हैं मेरा पता, ये है मेरा पता,
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: करेक्ट, ये है आकाशवाणी रेनबो जिसे आप सुन रहे हैं इस वक्त आकाशवाणी के दिल्ली NCR में हमारे एकदम फिक्स पते पर यानी 102.6 माइंड ब्रेक मेगाहर्ट्ज पर, और देश के अलग अलग हिस्सों में हम आपको मिलते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर, और साथ ही आप हमें देशी नहीं बल्कि दुनिया भर में कहीं भी इंटरनेट के माध्यम से यानी न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से सुन सकते हैं। तो जहां भी जिस भी तरह से जिस भी फ्रिक्वेंसी पर जिस भी माध्यम से मीडियम पर आप हमें सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है रंगों की इस महफिल में जिसका नाम है रंगे महफिल। तो बस हम तो आपको इतना

भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारी कहाँ, ये तो नाम को हमारी है, आपकी ही तो है, आपकी मोहब्बत से ही तो हम जिंदा हैं और ये महफिल रोशन।

क्या बात है, क्या खूबसूरत ख्याल है ना ये। और इस ख्याल में अगर मैं ये जोड़ दूं रंग महफिल में, जो मुझे अभी भी ख्याल आया, जॉन एलिया साहब का एक बड़ा मशहूर ये शेर है, वो कहते हैं कि सिलसिला ही ना होता ना ही गिला होता, सिलसिला ही ना होता ना ही गिला होता, या तो वो मिल गया होता या फिर मिला ही ना होता।

क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है ये। एक आवाज़ ऐसी जो जमानों जमानों तक हमारे जहन में ताज़ा रहेगी, कैद रहेगी, और उस पर उस आवाज़ को जिन अल्फाजों ने ताकत दी है वो शख्स के लिखे हैं जो जिसने अपने कलम से जब भी कुछ ऐसा लिखा बस वो दिलों में हमेशा हमेशा के लिए घर कर गया। बिल्कुल ये अल्फाज जो मैं दोहराना चाहता हूँ जिसमें इस गज़ल में कहा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, खुदा से रोज़ तुमको मांगता हूँ, मेरी चाहत इबादत हो गई है। ये अल्फाज डॉक्टर बशीर बद्र ने लिखे हैं, ये उनकी मशहूर गज़ल है और इस गज़ल को आप जानते ही हैं, आपने सुना भी अभी कि जगजीत सिंह साहब ने गाया है। एल्बम थी तुम तो नहीं हो 2005 में लिखी थी और समझिए कि 2005 से लेकर अब तक अगर मोटे तौर पर देखें तो तकरीबन 21 बरस हो गए हैं, लेकिन हम अब भी इस गज़ल के उतने ही दीवाने हैं और मुझे लगता है कि हम हमेशा रहेंगे। और बशीर साहब आप तो आपके लिए बस हम इतना ही कहेंगे कि अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा मगर तुम्हारी तरह मुझे कौन चाहेगा। आपकी जो ये चाहत है, आपकी जो मोहब्बत है, आपके जो अल्फाज हैं, आप भले ही इस क्या कहते हैं सांसारिक जगत में ना रहें लेकिन हमारे भीतर, हमारे मन में, हमारी आत्मा में आपके अल्फाज, आपकी ये गज़लें, आपका अंदाज़ और मंच पर जब आपको सुना करते थे वो यादें हमेशा साथ रहेंगी। और इसीलिए बस आपके लिए इतना ही कहेंगे कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस कड़ी में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो फिलहाल बशीर साहब को हम याद करेंगे, करते रहेंगे और हमेशा उन पर नाज भी करेंगे कि ऐसा एक शायर जिसने अपनी बड़ी साधारण सी और दिल को छू लेने वाली गज़लों को लिखा और हमेशा के लिए हमारे घरों में अपना घर बना लिया। जगजीत साहब, बशीर साहब, सलाम है आपको।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाश वाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

आशा जी यानी आशा भोसले एक वर्सेटाइल कलाकार, कमाल की फनकार, एक अलग अंदाज, एक अलग अदा, एक अलग रंग।

अरवा गुजरा किया हम रह गुजर देखा किए। आशा जी की आवाज़ में बेहतरीन सी गज़ल आपने सुनी आकाशवाणी के रेनबो पर, जहाँ चल रहा है इस पर प्रोग्राम रंगे महफिल। और रंगे महफिल में आपके साथ आपका हम सफ़र, मैं हूँ, मेरा नाम विकास है। और कहना कुछ आपसे यूँ है कि हर लफ्ज़ के तमाम मानी में हम भी थे, हर लफ्ज़ के तमाम मानी में हम भी थे, क्या दौर था कि तेरी कहानी में हम भी थे। उठती है एक कसक सी तेरी तस्वीरें देख कर, ताज़ा में हम नहीं हैं मगर पुरानी में हम भी थे। तू आम साना जान हमें ए हसीन शख्स, तू जैसा अब है वैसे जवानी में हम भी थे। और सैलाब गम में न जाने कहाँ बह गए वो दिन, सैलाब गम में न जाने कहाँ बह गए वो दिन, जब तू भी मौज में था और रवानी में हम भी थे।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनल।

आकाशवाणी का रेनबो आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं रंगी महफिल, आपके साथ मैं हूं विकास। और वक्त जो है हमारे हाथों से ऐसा फिसलता हुआ जा रहा है कि अब क्या ही आपसे कहें, है ना। लेकिन ये कह सकते हैं कि शिकायत और दुआ में जब शामिल हो एक ही शख्स, शिकायत और दुआ में जब शामिल हो एक ही शख्स, तो समझ लेना कि इश्क करने की अदा आ गई है तुमको। और मेरी तो शिकायतों और दुआओं में आप हैं ही, है ना। और साथ में आपसे मिलने की उम्मीद भी है कि फिर मिलेगी ऐसी ही किसी रंगे महफिल में, आपसे मिलने की ऐसी कोई तारीख जब मिल बैठेंगे आप, मैं और हमारा रेनबो, है ना। तो वक्त मिले तो ज़रूर लौट कर आइएगा मेरे साथ, उस रंग महफिल को भी सजाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको बहुत बढ़िया गज़ल दे रहा हूँ और आपसे गुड बाय कहूँगा, लेकिन अब भी फ़िलहाल ये गज़ल चंदन दास की आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल समग्र

अभियान के अंतर्गत फंड जारी करने और उसके उपयोग की समीक्षा को लेकर बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा 3.0 को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से SSA, पीएम पोषण, उल्लास, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वयन के माध्यम से एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी तथा इंटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की उपस्थित में भारत में सबस्ट्रेट निर्माण प्रौद्योगिकी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने कल नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 2:12:05 और 44 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो। और आज के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। आवाज आशा भोसले और किशोर कुमार की है। फिल्म का नाम है खेल खेल में।

ये खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे खिल खिल में फिल्म से, और अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे गाया है किशोर कुमार, लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है अजनबी।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: और दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र सिंह का गाया फिल्म जमाने को दिखाना है का ये गीत।

और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: और अब बारी है इस गीत की जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है जमीन।

12:36 और 35 सेकेंड हुए हैं। दोस्तों, आप इस समय सुन रहे हैं प्रोग्राम जीरो आर शो, मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ। और आइए अब आपको सुनवाते हैं काला सोना फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और डैनी ने।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और आइए अब सुनवाते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में ना खुदा फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

इस खूबसूरत गीत को अभी आप सुन रहे थे नाखुदा फिल्म से, और आइए अब आपको सुनवाते हैं समाधि फिल्म का गीत, आवाज आशा भोसले की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आकाशवाणी।
1: दोस्तों, जीरो आर शो के इस प्रोग्राम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म शंकर हुसैन का ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है।

राज्य सरकार द्वारा मित व्ययता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। सिक्किम में मुख्य सचिव आर तेलंग ने गैंगटोक में आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष मध्य जून से शुरू होने वाली यात्रा में 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10 दल शामिल होंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू

होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर

शुचिकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: दीदी पियानो कौन बजा रहा है? तुम बंद करो इसे, मैं कहती हूँ बंद करो इसे। मैं प्यार नहीं करती तुमसे, हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा।
1: हमारे बीच कुछ नहीं रहा?
0: क्या हक है तुम्हें मेरे ही घर में घुस के मुझे सताने का?
1: तभी तो तुम तक मेरा जुनून, मेरे प्यार का पागलपन पहुंचेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मित वैता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने जिलाधिकारियों को 3 दिन के भीतर जन सूचना जारी करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने की 9 तारीख को होगी। सिक्किम में मुख्य सचिव R. तिलंग ने गैंगटोक में आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष मध्य जून से शुरू होने वाली यात्रा में 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10 दल शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्रवाई की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन हांग क्लाइंग 5 दिन की यात्रा पर भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन हांग क्लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत

संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति 2 जून को व्यापार और उद्योग से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मुंबई भी जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए। अब फाइनल में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 2:05 और 45 सेकंड हुए हैं। एफएम रेनबो पर आइए सुनते हैं भुलाई ना बने। आपके साथ मैं हूं अर्चना बिसारिया।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: हमारे हृदय के भाव जुड़े प्रभु से और हम सब करें आराधन। आपके लिए आकाशवाणी ला रहा है आराधना चैनल।
1: अम्बे चरण कमल है तेरे।
0: शीघ्र ही होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म और आकाशवाणी ऐप पर आराधना चैनल।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर

0: घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इसमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ATA के पुनर्गठन या इसे हटाने के निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितव्ययिता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने जिलाधिकारियों को 3 दिन के भीतर जन सूचना जारी करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने की 9 तारीख को होगी। सिक्किम में मुख्य सचिव आर तेलंग ने गैंगटोक में आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष मध्य जून से शुरू होने वाली यात्रा में 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10-10 दल शामिल होंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग आज 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग क्लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति 2 जून को व्यापार और उद्योग से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब फाइनल में गुजरात

टेंस का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: कमल सी तेरी बोली तेरी ची नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा

0: मुहब्बों पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड

0: स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग क्लाइंग आज 5 दिन के भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग क्लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति 2 जून को व्यापार और उद्योग से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मुंबई भी जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितवैयता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिला के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कोयल सी तेरी बोली,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90

सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी आकाशवाणी ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।